सत्संग मिले सो तरिया मेरे माधव जी, सत्संग मिले सो तरिया गंग बनारस हिंदुआ मुसलमाना मक्का काबा।

माँ गौरी। सत्संग मिले सो तरिया, सत्संग मिले सो तरिया, साध संगत हुई निर्मला। एक उत्तम पंथ सुनो गुरु संग।

या संगत विच जेड़ा आ जांदा है उतर जांदा है, जेड़ा संगत करदा है उसका पार उतारा हो जांदा है। संगत आप भी संगत कर रहे, संगत कई प्रकार दी, पर जेड़ी संगत आप कर रहे हो, साहबा ने इसनू साध संगत करके आखे, उत्तम करके के, श्रेष्ठ पावन पवित्र करके के, कि संगत साध संगत भाव सत दे नाल जुड़ना साध संगत, जिथे सत एक अकाल पुरख की आराधना हो रही होवे उसनू आख देनी साध संगत, ते संगत किनू कहिंदे नी।

0: संगत कैसी जानी है।
1: केड़ी संगत, कैसी संगत, केहो दी संगत।
0: सत्संगत कैसी जानी है जिथे एको नाम विखानी है।
1: ओ संगत जिथे एको नाम दी आराधना हो रही, सारे एक नाम दे नाल जुड़े ने, ओ साध संगत।
0: साध संगत मिल होए तराबा,
1: ते संगत करन दे नाल वस्तु केड़ी मिलदी।
0: बिसर गई सब तात पराई।
1: इंसान कितनी भी कोशिश करे तात पराई नहीं छड़ सकता। तात पराई दा पाव है जलन, ईरखा, किसे नू वेख के जलना। तात पराई नहीं छड़दा, पर साहब आखदे ने जीव जो संगत विच आ जांदा ना सब कुछ छड़ जांदा।
0: बिसर गई सब तात पराई जब ते साध संगत मोहे पाई।
1: कितना संगत विच आउण दा लाभ है। जदों संगत विच आउंदा तात पराई भुल जांदी।
0: इत्थे ही बस नहीं, ना को बैरी नहीं बिगाना।
1: वैरी भी सज्जन नजर आउन लग पैंदा, दुश्मन भी मित्र लग पैंदा, क्योंकि संगत विच आ गए।
0: ना को बैरी नहीं बिगाना सगल संग हमको बणियाई।
1: ये प्राप्त किवें होया,
0: जो प्रभु कीनो

प्यारे गुरुदेव जी, सच्चे पातशाह सतगुरु साहेब श्री गुरु नानक देव जी महाराज, आप जी अपने इस पवित्र शब्द दे विच ये विचार बख्श रहे हैं, जप हो ता एको नामा, अकाल पुरख वाहिगुरु का नाम जपो, जे नाम नहीं जपते अवर निराफल काम, बाकी सारे काम निराफल और फ्रूटलैस हैं, उन्हां दा कोई भी फल नहीं है जे नाम नहीं जपते। इस करके दो पंक्तियां मैं आप जी दे सामने अर्ज कीतियां हैं। एक, नाम बिना नरक कहीं न लेख है। नाम तो बिना इंसान किसे कम दा नहीं है, किसे कम दा नहीं, किसे लेखे च नहीं। और दूसरी, नाम बिना सूना घर बार, नाम तो बिना ये शरीर रूप जो कर है ये बिल्कुल सुन्ना है, और इस दे जो गुण हन इस काया रूपी कर दे वो नाम नु भुलाउण दे नाल हर बिसल तेरे गुण गले। महाराज जी ने ते बाणी च ये भी आख्या है

अपने विचार अस्वारी कीजे। कहिंदे हुण तुसी अपने विचारां दे विच खोए पए हो, उन्हां नालों सैपरेट नहीं हो, विचार अते तुसी एक में खोए पए हो। विचार आंदा है तुसी उस दे विच रल जांदे, पर इत्थे टेक्निक ये दसी जा रही है कि अपने विचार अस्वारी कीजे, तुसी अलग हो जाओ विटनेस करन वाले, अपने आप नूं सेपरेट कर लो, स्पेक्टेटर बन जाओ अते जो विचार है उन्हां दे उत्ते सवार हो जाओ। दैट यू कीप आई ऑन योर एवरी सिंगल थॉट द मिनट इट क्रीप्स इन एंड व्हाट इट डज इनसाइड यू फॉर हाउ लॉन्ग इट स्टेज इनसाइड यू एंड देन हाउ द सेकंड थॉट इज फॉलोड बाय। कहते ट्राई टू सी द होल प्रोसेस ऑफ थॉट्स कमिंग एंड गोइंग। अपने विचार अस्वारी कीजे, स्नान करके चौंकड़ा लगा के एकांत दे विच बैठ जाओ, अते फिर अपने अंदर जिस तरह से बाहर कोई तुरिया फिरता है उसनू देख सकते हैं, ख्याल भी तो अंदर तुरिया ही फिरता है ना, ख्याल भी अंदर तुरिया ही फिरता है। जिस तरह अपने मकान च कोई तुरिया फिरता है असी अलग चेयर पे बैठ के सिर्फ उसनू वाच कर सकते हैं। टेलीविजन दे उत्ते तस्वीरां चल फिर रही हैं, तुर फिर रही हैं, असी अलग चेयर दे उत्ते बैठ जाने हैं तो उसे उन्होंने देखते हैं। इस तरह महसूस करो कि देर इज अ ड्रामा ऑफ थॉट्स इज गोइंग ऑन एंड यू आर नॉट पार्ट ऑफ इट, यू आर जस्ट विटनेसिंग। अपने विचार अस्वारी कीजिए, अपने विचारां दे उत्ते अस्वारी करो, भाव के उन्होंने इनडिफरेंट होके उन्हां नालों अलग होके जस्ट वॉच दैम। सो पहली चीज तुसी की अचीव कीती है कि यू एंड थॉट हैव बिकम टू डिफरेंट थिंग्स, यू हैव टोटली डिसकनेक्टेड यूअर सेल्फ फ्रॉम द थॉट्स। तुसी अपने आप नूं थॉट्स तो अलग कर ले, अपने विचार अस्वारी कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता की होएगा कि थॉट्स का ट्रैफिक आ रहा है, तुसी सिर्फ देख रहे हो कि थॉट आ रहा है ना, उस लई बुरा ख्याल बनाना, क्योंकि ख्याल बनाओगे तो ख्याल च उलझ जाओगे, ना उस लई चंगा ख्याल बनाना, कोई ओपिनियन नहीं फॉर्म करनी, थिंकिंग नहीं करनी, जस्ट प्लेनली वाच देम। सिर्फ उन्होंने देखना है, अपने विचार अस्वारी कीजे दा मतलब है कि अलग होके सिर्फ उन्होंने देखो। तुसी कोशिश करके करन दी देखो कल तो सवेर तो, और फिर जदों भी वक्त मिले इस अभ्यास नू करना है, अपने विचार अस्वारी कीजिए, थॉट्स तो अलग होके सिर्फ उन्हां दा जो फ्लो है उसनू देखना है। जदों तुसी देखोगे, थॉट्स नू देखोगे, क्योंकि तुसी थॉट दे नाल कोऑपरेट नहीं कर रहे, उस दे विच एनर्जी नहीं पा रहे, उस दे नाल ज्वाइन इन नहीं कर रहे, इस करके वो थॉट जो है उत्थे अपने आप ही सीज हो जाएगा। थॉट नीड्स योर कोऑपरेशन एंड योर टोटल इन्वॉल्वमेंट, तां थॉट जो है वो स्प्रेड हुंदा है, वधदा है, अगां वधदा है। जे तुसी उस दे नाल ही न रले तो थॉट उत्थे सीज होना शुरू हो जाएगा, और उस तो बाद तुसी देखोगे कि विद इन सैकेंड्स एक होर थॉट आना शुरू होया, बट इन बिटवीन फर्स्ट थॉट एंड सैकेंड थॉट यू विल फाइंड ए वेरी स्मॉल गैप, फ्यू सैकेंड्स का गैप, अते उस गैप के विच जदों के थॉट नहीं है की है, सिर्फ एक वाचर है जो कि विटनेस कर रहे हैं, जो कि देख रहे हैं। वो वाचर कौन है? वो साड़ी आत्मा है, वो साड़ी बींग। So in those glimpses, we

experience our being free from thoughts. तो जितना जितना ये अभ्यास बढ़ाते जाओगे उतना उतने वो गैप्स बढ़ते जाएंगे. जो गैप्स लंबे होंगे जाएंगे तो उस टाइम दे विच सिर्फ जो एक्सपीरियंस करने वाला या मंदिर में कौन बसाई, जिसलिए किसी वंडर करते हैं कि इस मंदिर च कौन रहिंदा है, वो है आत्मा, वो है वाहिगुरु जी की अंश, वो है वाहिगुरु जी की जोत. सो देन वी विल एक्सपीरियंस द एक्सपीरियंसर. जो एक्सपीरियंस कर रहा है, जो थॉट्स नू देख रहा है, फिर असी उसनू पावांगे उत्थे मौजूद. उस दे नाल साडा ध्यान, साडी सुरती दा जिहड़ा कनैक्शन है, वो आत्मा दे नाल जुड़ना आरंभ हो जाएगा. सो टेक्निक है, अपने विचार असवारी कीजे. अते जदों ये अभ्यास कर रहे हो तो आप अचानक पाओ कि तुसी खो गए हो, तुहानू पता नहीं लगा किसे ना किसे थॉट दे फ्लो दे विच निकल गए हो, उदों फौरन वापस फिर वापस आओ. और वापस आके जदों ही कोई थॉट आवे, मन किते जान लगे, अपने मन नू आ पंक्ति बोल देनी केड़ी.

फराई है। प्राई स्त्री वन लुक अंदर ठाणी, याद रख अजराइल फरेश्ता तिल पीड़े कान। भाई जोगा सिंह के कन्ने च आवाज पई, भाई जोगा सिंह ने झट जेड़ा पैर पौड़ी ते रखे सी हेठा कर लिया, पिछे मुड़ मैनू तो कोई वेख नहीं। प्यारी सास संगत अद्धी रात भाई जोगा सिंह दूसरी वेरी फिर हूं कोई नहीं वेख, पर जिस वेले पौड़ी ते पैर रखे फिर कन्ना आवाज आई केड़ी।

भाई जोग आसिन पहुंचे हजूर ने दूरू ही तक देखे प्यारी सास संगत जिस सिख तू बगैर मेरा काम नहीं सी ना चलता वो भाई जोगा सिंह आ गया आ जा जोगिया साढ़े कोल आ जा भाई जोगा सिंह सुन के बड़ा हैरान मैं तो समझिया सी कि गुरु साहब मेनू जोड़िया च खड़ा करनगे पर ए तो प्यार नाल पै बुलांदे भाई जोगा सिंह साहबां दे कोल पहुंचे जोगा सिंह भाई आखा जी आया सोना सिख तू है सरदार बीबा हर नार परिवार नू छड़ के ते साडे नाल ते कीता प्यार बीबा भाई जोगा सिंह सोच मन मैं तो समझिया सी गुरु अंतर जामी जे अंतर जामी होंदा तां हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा जे हुशियारपुर दी करतूत नू जानदा होंदा तां मैनू सजा दे पर गुरु तो मेनू प्यार पिया कर जे गुरु अंतर जामी नहीं जे गुरु इथों दिया नहीं जानता तो मेरी दरगाह कि फड़ेगा बारह साल एवं गुरु की सेवा की आखो सेवा अंतर जामी सदगुरु सोचन लग सिख नू काम दे कुंड विचों कढ़िया है हुण अशरदक दे खाते च पिया पैंदा है गुरु नू पता है शरदा तू हीण पिया होंदा हजूर ने कहा जोगे आ मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने तकिया इतना नूर सी साहबा ने चेहरे ते नजरा नीवियां हजूर ने फिर किया जोगिया मेरे वल क्यों नहीं देंदा तकदा फिर खांदा तीजी वेरी जिसले साहबा ने किया जोगिया मेरे वल तक भाई जोगा सिंह ने जिसले कलगीधर पातशाह वल तकिया भाई जोगा सिंह हैरान हो गया कंबन लग गया की तकदा है कि श्री आनंदपुर साहब दे सोने

0: बादशाह मेनु बख्श। मैं भूल गया, हजूर कहन लगे जो गया रोई जा उतने तक जितने तक तेरे अंदरों हौमे अखां थानी पानी बन के बाहर नहीं निकलती। रोई जो गया तो मेरी अजमाइश की, तू तो ए भी कहन लग गया कि गुरु नु पता ही कोई भूल गया। रो रो के ताई जोगा सिख दा मन हौला फुल हो गया। अदू कहन लगे जोगिया भूल गए हां पातशाह, कलगीधर पातशाह जी कहन लगे जोगिया जी भूल गए हैं तो जा तेन बख्शिया। आखो श्री बस गल तो इतनी, भूल कर लेनी ए इंसानी फर्ज, पर जे भूल
1: असी प्यार नाल पढ़ो।

भगवान सर्व तुम्हारी भाई दूर नेड़े तो चल के मेहरबान दाते दे दरबार जुड़ के ते मालिक दिया मेहर दे नाल अपनी चोरियां भरी केडी बख्शी फिर लगातार बनाए प्रोग्राम अनुसार कुछ दिन तो आप गुरु दिया मेहर प्राप्त आप भी भागा वाला गुरसिख परिवार घरेवाल परिवार ओ होनहार बच्चा जो सारिया संगत वास्ते जिन्हों वालों गुरु का लंगर तैयार कर गुरसिख पैरी सात संगत एक सिख न प्रसाद सिखा देना ओदा भी बड़ा फल पंजा सिंघा भोजन सिखा देना पंजा कलगिया वाला आप आ जाता है जरा सारी संगत को प्रसाद सिखा और मेहनत और गुरु परिवार भी धन जो गुरु नानक देव बख्शे खजाने चो गुरु के लंगर तैयार हो सारिया संगत ने छके तो प्यारी सात सिंह दे मेहर बाबा जी बचन करते सन गुरु की मेहर कोई दरख्तों नाल थोड़ी लगी गुरु की मेहर कोई दुकाना से थोड़ी विकती है मेहर की निशानी की है जिस वेले आप गुरु नाल जुड़ जाइए समझो मेरे ते गुरु की मेहर जिसनों तो प्रभ वल तिस क्या मोचन की जिसनों तेरी मेहर सो तेरी तो आओ प्यारी सात संगत आनंद साहब का पाठ करके कीर्तन की समाप्ति करिए अमृत वेले फिर आके जाओ प्यारी सात संगत बस एक दो दिन बाकी रह गए हैं ते संडे का प्रोग्राम इस प्रोग्राम का आखिरी प्रोग्राम है फिर नदी नाम सहयोगी मेला कल साहब जी बख्शिश करन आप जी दे दर्शन तो मैं आस करता जिथे प्यार नाल प्रबंधकों ने प्रोग्राम बनाए वाल साल दी संगतां दा प्यार तो मैं आस करता आउंदे प्रोग्रामां च अमृत वेले भी आके जो अमृत वेले का जो आनंद है प्यारी सास नूं तो कहवे को शोभा नहीं देखाई अज पिन्नी रह नड़िए चमकण तारे रहा शब्द अमृत वेले पढ़िया सारी संगत गूंजदी इन जापदा सी जिवे सचमुच जा गए संत जना मेरे राम उन्हां नूं संत पद भी मिल गया तो अमृत वेले भी ते शामां नूं भी जुड़ो आओ साहब दा पाठ सारे मिलके करिए धन धन साहब श्री गुरु गोबिंद सिंह कलगीधर पातशाह जी पंथ देवाली सतगुरु जी आप जी दी महान महान बख्शिश द्वारा आप जी दे दरो करो वसाए आप जी दे प्यार वाले गुरसिख पाई पाई पातशाह जी दे बख्शे खजाने विचों शब्द आदर करदे पातशाह जी दी बाणी नाल जुड़ के बाणी दा प्यार करदे हो कीर्तन भेट पाउण अरदास कराउंदे हन मेरे अंतर जामी गुरु जी आप अपने गुरसिखां नूं बच्चे बच्चिया नूं सर्वत माई पाई नूं नामदान बख्शो सिखी जीवन बख्शो अपने चरणां दा प्यार

अनंसाव पार करके कीर्तन की समाप्ति अरदास होगी हुक्मनामा कड़ा प्रसाद की देख बच्चों वालों गुरमुख परिवार वालों जो सेवा है वह भी प्रवान करनी तो आओ हम अनंसाव पाठ सारे मिलकर करिए गुरु नानक पातशाह मेहरबान सतगुरु आप जी दे प्यार वाले गुरसिख माई पाई साहब जी जिन्होंने आरती ने बख्शिश करके ए दात बख्शी और आप जी दे दरबार ही जुड़ के आप जी दे बख्शिया खजाने सतगुरु आप जी दे पवित्र पावन शब्द का आदर करते हैं कीर्तन भेज गाउंड अरदास कराते हैं अंतरगामी गुरु जी आप अपने गुरसिखा बच्चे बच्चिया नामदान बख्शो कारोबार च वादे बख्शो सिखी जीवन सत्संग भी दात बख्शो।

तू क्यों व्यर्थ है। इसने प्रथाए नौवे पास दिन विकथन कीता, हर की गत नाही कौ जाने, जोगी जति तपी पछहारी अर बहलोक सियाने। तू बेअंत को बिरला जाने, को बिरला जाने, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, गाहे सूफी गाहे जाहिद गाह कलंदर में शब्द, रंग हाए मुख्तलिफ दारिद बुते अजारे मा। तू बेअंत अपनी माया आप सारी आपे देखन हारा, नाना रूप तरे बहु रंगी सब तेरे निया। तू बेअंत ब्रह्मा न जाने अंत, अंत न पावत देव सब, मुन इंद्र महाशिव जो करी। तू बेअंत अत ऊंचा ता का दरबारा।

0: सब इस तुक नु गायन करो और सिंह दिस द शब्द ऑफ धन गुरु रामदास साहेब सोट महला
1: चौथा
0: सब मिलके करो कीर्तन।

मन का इशनान भी करना पेगा। गुरु जी ने हुक्म दिता है, गुरु सतगुरु का जो सिखा खाए सो भल के उस हर नाम ध्यान है, वो किस तरह करना है।

एकदम तुहाडा मन उल्टी होएगा, एकदम हर एक बंदा का मन फिर शुरू होएगा, सब कॉन्शियस तो थॉट शुरू आएगा, फिर तुसी अंदरों वाहेगुरु, एक साथ आएगा वाहेगुरु कटेगा, दोबारा आएगा वाहेगुरु कटेगा, फिर हौली हौली अपना मन साफ हो जाते, जे असी हर रोज करते।

नस के गई। स्वामी गुरु नानक आ रहा है, फकीरी लावास विच अगे कदी घोड़ियां ते आंदा सी, कदे पालकी विच बैठ के आंदा सी, अज फकीरी लावास मैनू लगदा है जरूर कुछ मंगण आया होगा। फिर तुहानू नाल लै जांदे ने, किन्ने किन्ने दिन तुसी घर नहीं दे आंदे। इंज करो तुसी अंदर लुक जावो ते मैं उन्हां नू आख देवांगी कि मेरा पति घर नहीं है। अज अपनी घरवाली दे आखी लग के मूला पिछले कमरे दे विच लुक गया है।

भी ऐसा होना चाहिदा है। जिस पासों जदों भी जरूरत होवे मंगया जावे ते मिल जावे। ओ शाह कैसा के जो जरूरत दे समय कम ना आवे। ते साई फरमान करदे हन के ऐसा शाह इको इक परमात्मा है, जदों भी उस पासों मंगया जावे ओ मंगा पूरियां करदा। ऐसे परमात्मा बारे, ऐसे शाह बारे साई फरमान कर रहे हन।

सतगुरां दे दर्शन करन वास्ते चली हां। ओ समा मोटरां गड्डियां नहीं सन हुंदियां, सारे पैदल टुरदे सन। इस जथे दे विच एक बजुर्ग बाबा भी टुरिया जा रहा है, सिर ते पंड चुकी हुई है, जिस विच अपने कपड़े ते जो श्रद्धा भावना भेटा है वो बनी हुई है। मन विच श्रद्धा, मन विच प्यार, टुरिया नहीं जांदा फिर भी गुरु दे दर्शनां दी तांग है, गुरु दे प्यार विच टुरिया जा रहा है।

जंगल वियावान है, कौन मेरा समान चुकेगा, किमें मैं जावां। उच्ची देनी आवाज मारी, भी है कोई हो जाया जिड़ा मेरा पार चुक लवे, मैं मजदूरी दे देवांगा। अज जदों बाबे ने उच्ची आवाज मारी ने, बाबा की तकरिया है, पौ सामने झाड़ियां वलों एक नौजवान गोल पगड़ी लंबा चोला, ये नौजवान आया, बाबा किथे जाना है। भई मैं सतगुरां दे दर्शन करन चलिया ते संगत विचों बिछड़ गया, पार मेरे कोलों चुकिया नहीं जांदा, लिया बाबा तेरी पंड मैं चुक लैंदा। बाबे दी पंड सिर ते चुकी ते बाबे दा हाथ अपने मोढ़े ते रख लिया।

सारी संगत ने आखिया सतगुरु जिन्हें भी लियाए सन सब ने पेटा दे देती है। ते सतगुरु जानी जान मालक आखन लगी, चंगा वे गरीब जे तू नहीं आना ते मैं तेरे कोल आ जांदा। जदों सतगुरां ने इनी गल आखी ना, बैराग दी हद ना रही, अखां दे विचों हंजो घिर आए, संगत दे विच टुरे आ रहे ने, ते जिथे भाई गरीबू बैठा है आके भाई गरीबू दे सिर ते हाथ रख के आखन लगे, क्यों वे गुरसिखा तू कोई भेटा नहीं ले।

राख पिता प्रभ मेरे मोहे निर्गुण सब गुण तेरे पंच बिखादी एक गरीबा राखो राखण हारे खेद करे अर बहुत संतावे आयो शरण तुहारे कर कर हारियो अनक बहु पाती छोटे कथु नाही एक बात सुनता की ओटा साथ संग मिट जाहि कर कृपा संत मिले मोहे तिनते धीरज पाया संति मंत दियो मोहे निर्भव गुर का शब्द कमाया जीत ले ओए महाबिखादी सहज सुहेली बाणी कहो नानक मन पया प्रगासा पाया पद निर्वाणी।

मैं तेरे रस रस गुण गावा, मन करके तेरी मैं शिव सला करा, मन करके तेरी भक्ति करा। एक हन गुण गाने, एक है रस रस गुण गाने। गुण गाउंदिया तो भाई कई बेरा मन गैर हाजिर भी हो सकता, पर जिन्हां ने तेरे रस रस गुण गाए हन उन्हां नूं तां आपे दी भी सुध नहीं रही, उन्हां नूं तां अपना आप भी विसर गया। इसलिए ये अमोलक दात है कि मैं तेरे रस रस गुण गावां, तेरे विच गुआच जावां, तेरे गुण गाउंदिया मेरी सुरत तेरे चरण

मोरे हृदय बसो गोपाल। गोपाल भी उना दे हृदय विच वसदा भई जो उस दे रस रस गुण गाउंदे हन। अकाल पुरख वाहिगुरु ईश्वर दा निवास भी उना दे हृदय ते ही होया जिन्हां ने उदे गुण गाए। एक दर्शन करना है, एक दर्शना तो रस मानना है। दर्शन तो सारे ही करते हैं पर दर्शना तो रस मानना एक अमोलक दात है, एक अमोलक

52 कवियां विचों श्रोमणी कवि सन, आप बड़े उग्र तपी सन। पता नहीं कितने जन्मां दी आप दी तपस्या सी, जिस दे सदके रसक बैरागी दुष्ट दमन दाता गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह जैसा उन्हां नूं गुरु मिल गया। एक समय दा जिक्र है कि धन गुरु गोविंद सिंह सच्चे पातशाह भाई नंद लाल जी ते अति प्रसन्न होए ते कहन लगे, नंद लाल साडा जी करदा कुछ मंग। किडियां खुशियां होंदियां हन जदों पिता आप अपने पुत्र नूं कह रहा होवे, बेटा तू बड़े चंगे कर्म कीते हन, तू बड़े चंगे कम कर रहा है, मेरा जी करदा तू कुछ मंगे। अज गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी ने कहा, नंद लाल साडा जी करदा तू कुछ मंग। तां भाई साहब जी दे नैन कटोरे भर आए, ओ मेरा दे साई, ओ बख्शिशां दे दाते, इस कीट नूं कह रहे हो कुछ मंग। हां तैनू ही तो कह रहे हां, तां फिर जे कृपा करन लगे हो तो फिर मेरे ते ए कृपा करो के दीते अंबरा लज्जते दीदार बख्श। ए दीदे ए जो अखां हन ए आपदा दर्शन तो कर रही हन, पर इना विच रस नहीं है, वो रस तेरी कृपा द्वारा प्राप्त हो सकता है। इसलिए जे तुठे हो तो दीदे अंबरा लज्जते दीदार बख्श, इना नेत्रां विच लज्जत बख्श तेरे दर्शना तो पूरन आनंद मान सकन। सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, इस सीने विच मेरे हिरदे विच तेरे सिमरन भी भुख लग पवे, क्योंकि भुख ना लगे तो कितने भी स्वादिष्ट पदार्थ सामने पए होन वो चंगे नहीं लगते, ते जे भुख लगी होवे तां साधारण पदार्थ भी बड़ा स्वादिष्ट लग रहा होंदा है। उचारण करो श्री, इसलिए भाई साहब कहंदे हन, हे कलगीधर पातशाह जे तुठे हो तां सच्चे नाम दी तेरे सिमरन दी मेरे हिरदे विच भुख लग पवे। साचे नाम की लागे भूख, उत भूखे खाए चलिए दुख। जिन्हां नूं सच्चे नाम दी भुख लग गई भाई, जन्मां दे कीते होए पाप उन्हां दे मिट गए, क्योंकि सच्चे नाम दी जिथे भुख है उथे पाप ठहर ही नहीं सकते। उचारण करो श्री, इसलिए भाई साहब ने यह दात मंगी, दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शोक दे। भाई साहब कहंदे हन कि मेरा दिल विषय विकारां दी अग विच पुज चुका है, ते तेरी कृपा होवे तां प्रेम मिल सकदा है ना, तां प्रेमा भगती मिलदी है जे गुरु दी कृपा होवे। इसलिए इस पुज चुके हुए दिल नूं प्रेम ला, मैं तेरे चरणां विच जुड़िया रहां, मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया रहे। ए शरीर देश होवे परदेश होवे, घर होवे बाहर होवे, दुख विच होवे सुख विच होवे, हे वाहिगुरु मेरा मन तेरे चरणों विच जुड़िया होवे। दीदा अंबरा लज्जते दीदार बख्श, सीना अंबरा मगज ने इशरार बख्श, ई दिले बिरयाम मारा शौक दे, दर गलूयम बंदगी दा तौक दे। तौक कहंदे हन पटे नूं, ते भाई साहब नंद लाल जी कहंदे हन, मैं तेरे दर दा कूकर हां, ते ओ कूकर मालक दा खवांदा है जिस कूकर दे गल विच पटा होवे। आख्या मेरे गल विच पटा पा के मैनू आप दा बना ले। ए पटा केड़ा है जो भाई साहब नंद लाल ने कहा, आख्या बंदगी दा पटा मेरे गले विच पा, श्वासा दे अंदर बार आंदियां जांदियां मैं जपदा रहा श्री वाहिगुरु।
आख्या होर भी कुछ मंगना है ता भाई साहब कहंदे ने कुछ होर भी मंगना है क्योंकि आप तुठे हो आपने क्या कुछ मंग मैं तदई तो मंग रहा आख्या मंग भाई होर की मंगता है ता भाई साहब नंद लाल जी कहंदे ने हिजर मारा आरजूए वसल बख्शो तेरे मिलन दी शिक मेरे हिरदे विच वसी रहे क्योंकि जिस हिरदे विच ईश्वर दे मिलन दा प्यार नहीं ओ हिरदा हिरदा नहीं है ओ ता एक शमशान भूमिका है जिस तरह शमशान भूमिका विच मुर्दे जलदे रहिंदे हन आख्या ओ हिरदा भी ऐसा ही तपदा रहिंदा है जलदा रहिंदा है जिस हिरदे विच साईं दे मिलन दा प्यार नहीं है उचारण करो श्री हिजर मारा आरजूए वसल बख्श ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श हर सरे मुयम जुबां कुन अज करम भाई साहब कहंदे ने हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी प्रसन्न होए हो तो फिर जितने मेरे शरीर दे रोम हन इन्हां नूं जीभा ला दिओ हर शरीर दे नाल 7 करोड़ रोम होंदे हन ते भाई नंद लाल जी कहंदे हन कि हे गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह क्योंकि असी कलयुगी जीव हां ते कलयुगी जीवां दी उम्र भी छोटी है दिन रात भी छोटे हन ते मैं चाहुंदा हां थोड़े समय विच मैं तेरा बहुता जस करां वध तो वध तेरे गुण गावां इसलिए मेरे हर शरीर दे रोम ते जीभ ला दे ते फिर एनिया जीभ नाल मैं की करा आख्या हिजर मारा आरजूए वसल बख्श ई खजाने चश्म मारा फजल बख्श हर सरे मुयम जुबा कुन अज करम ता बिगोए दुविस्व हकरा दम बादम मैं तेरे गुण गावा ते की मंगा मैं ए मना तेरे कोलों के रस रस गुण गावो ठाकुर के मोरे हृदय।

आप केस सुखा रहे हो। अमृत वेले दे दीवान दी समाप्ति होई, अपने स्थान ते आके आप केस सुखा रहे हन। ते सूरज दी पहली किरण जदों निकली ते आप दे केसां दी तार ते जदों पई ना, ते भाई साहब जीतां विचों वेख रहे सन ते विस्माद हो गए उस केसां दी तार नूं वेख के। ते आप कहंदे ने दीन दुनिया दरक मंदे, ए दीन ते दुनिया तेरी जुल्फां विच वधे होए हन, इउं मालूम हो रहा। तेरे एक रोम तो मैं दो जहान भी वार देवां तां वी घट हन। दीन दुनिया दरक मंदे, आपरी रुख सारे मां, हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां। मान में आरे मुताबे गमजे मई गाने यू, मेरे पास केड़ी वस्तु है जो मैं तेरे तो वारा। मान में आरे

लाया प्रीतम आपने तन मन होए निहाल जां गुर देखा शमन। मेरा तन मन निहाल हो गया है, मैं सदके हो जावा तेरे एक एक केसा दे रोम तो। जिथे मेरी नजर जा चुकी है तो भाई जो अपने गुरु तो सदके जांदे हन बलिहार जांदे हन उना दा ए लोक भी सुखी होंदा है परलोक भी सुहेला होंदा है। तो भाई सब कहंदे न हर दो आलम कीमते यक तार मुए यारे मां मान में आरे मताबे गमजे मैगाने ऊ यक निगाहे जा फिजाए बस बवद दरकारे मां। गाहे सूफी गाहे जाहद गाह कलंदर में शवद रंग हाए मुख्तलिफ दारद बुते तैयारे मां। राजन में तू राजा कहिए पूमन में पूमा ठाकुर में ठकराई तेरी कौमन सिर कौमा। पिता मेरो बड़ो धनी अगमा उस्तत कौन करी जे करते देख रहे बिस्मा। बस तेरी उस्तत असी इसलिए करदे हां कि तेरे चरणा नाल साडी सांझ बन जावे साडी चोली ए दात पा दे के रस रस तेरे गुण गाउंदे रही।

0: गुरु रामदास, धन गुरु अमरदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मैं ठीक हो गया, मेरा रोग तो उतर गया, मैं चल फिर सकता। धन रजनी, ये तेरे सदक का फल है जिहड़ा अज मैनू नवा जीवन मिलिया। रजनी रजनी, मैं ठीक हो गया, मैं चल फिर सकता रजनी, मेरा रोग तो उतर गया रजनी, मैं ठीक हो गया।
1: कौन हो तुसी?
0: मैं कौन है? तुसी मैं पछाणिया नहीं रजनी जी?
1: मैं कहनी मेरे पति जिन्होंने मैं इतने छटके गई सी, किथे ने, किथे ने मेरे पति?
0: मैं ही थोड़ा पति है रजनी जी, थोड़ा पिंगला। तुसी मैं चिंतपुर नहीं लग गए, तुसी मैं संजी दे दर्शन कराए, तुसी मैं गोंदवाल लग गए, तुसी मैं छबीर वाले बाबा जी तो पानी पिया। मैं थोड़ा पति है, मैं थोड़ा पिंगला है रजनी जी, मैं थोड़ा पिंगला।
1: ए ते ठीक है, पर थोड़ा रोग किवें ठीक होया?
0: ए सारी करामात इस जल्दी है। थोड़े जान तो बाद मेरे कन्ना फिर वही आवाज आई, कागो हंस करे। तो मैं रिड़दा रिड़दा ए छपड़ी के कंडे ते आ गया और टाणी नूं फड़ के पानी च उतर गया। जब बाहर आया तो मेरे सारे जख्म तोते पए सन।
1: तुसी टाणी नूं फड़ के पानी च गए सी ना?
0: हाँ।
1: केरे हाथ नाल?
0: ऐस नाल।
1: अच्छा, तां फिर तुसी ऐस हाथ नूं भी पानी च पाओ, मैं अपनी अखां नाल इस जल दा चमत्कार देखांगी।
0: आओ मेरे नाल।

0: हे परमात्मा, तू मेरी पुकार सुन ले। माता दे दरबार वेख्या सपना साकार कर देता। तेरी लीला ब्रह्म पारे। तन गुरु अमरदास।
1: तन गुरु रामदास। रजनी
0: स्वामी,

जिन्हां ने मेरा प्रभु पाया है, मैं उदी मिन्त करां, उदा तरला करां, उदे चरण पकड़ां, भई मैनू भी दस केड़े रस्ते तुरां ते मेरा मालक मैनू मिल जावे।

का फिर देखे प्रीतमा मैं नीर वहे वह चले जी। आज सतगुरां ने प्रीत नु तोड़िया जदों सहदे ने अखां खोलियां की तकिया जिस गुरु नु याद करदा सी सतगुरु सामने खलोते ते दूरों ही उची उची कहन लगा सतगुरु मैं सुनिया सी तू गरीब नवाज है तू निमाणिया नु मान देना जेडे तेनू याद करदिया नु उन्हां नु दीदार देना पर अज जाणिया तू सचमुच ही गरीब नवाज है तू सचमुच ही निमाणिया नु मान देना जेडे तेनू याद करदिया तू उन्हां नु दीदार देना। सतगुरां दे दीदार कीते अज बेड़ी विच सतगुरां ने चरण पाए बेड़ी दूसरे कंडे लै गया ते जदो सतगुरु दूसरे कंडे जा खलोते भाई दया सिंह नाल दे सिख आ गए ते अज सतगुरां ने इशारा कर दिता दया सिंह इस गुरु नू इस गुरु प्यारे नू कुछ कुमोरां दे गरीब सिख है मजदूरी करदा सारा दिन मेहनत करदा अज साडे प्यार करके इसने मेहनत भी नहीं कीती कुछ मोहरां दे भाई दया सिंह ने जेब विचों मोहरां कढ़ियां ते जदों सहदे नू मोहरां देण लगा ते सहदा पुब्बां मार के रो पिया ते कहण लगा ओ पाछा ओ मैनू मोहरां नहीं चाहिए मैनू धन नहीं चाहिदा दुनिया दे लोक आउंदे हन मैं उन्हां नू भी दरिया पार कराउंना हां मोहरां दे जांदे हन धन दे जांदे हन अज तुसी आए हो तुहानू भी दरिया पार कराया तुसी मोहरां दे गए ते दुनियादारां विच तुहाडे विच फर्क किहड़ा है मैनू धन नहीं चाहिदा मैनू मोहरां नहीं चाहिदियां ते साहब अज प्यार दे विच वस होके कहण लगे सहदे आ फिर की चाहिदा मंग की मंगदा अज जो तू मंगे तेरी झोली विच ओह दात पा देवां ते सहदे ने गल विच पाया पल्ला नेत्रा जो जल वेंदा ते हाथ जोड़े ते कहिंदा मोहरां देख के गलो ना ला मैनू किते शकल ना मेरी विसार छड़ी अज तुसी आए ते मैं पार कीता कल नू मैं आवां मैनू कार छड़ी बस होर कुछ नहीं तेरे को मंगना अज तुसी आयो मैं तुहानू दरिया तो पार कीता है ते कल नू मैं संसार छड़ के आवां मैनू भव सागर तो पार कर दे होर कुछ नहीं मंगना ते गुरु कलगीधर पातशाह ने गलवकड़ी विच लिया ते घुट के कीता प्यार अज सतगुरु बख्शिश करदे करदे अज मुस्कुराउंदे होए अज सहदे नू वर दिता ते साहिबा ने भी कहा ओ सहदे आ तेरियां गल्लां बड़ियां प्यारियां ने अज असी आए ते तू पार कीता जा इक्की कुलां तेरियां सारियां जा सहदिया तेनू कल्ले नू नहीं तेरियां इक्की कुलां दा उधार कर देंदा आओ भाई घर विच ये तो गुरमुख हो जावे इक्की कुलां दा भी उधार कर देंदा है घर विच इहो जे प्यार करन वाला किते पैदा हो जावे दर्शना दी तांग हर वक्त मन विच वैराग जी दे होवे इक्की कुलां दा उधार

ऐसी कृपा मुहे करो। एक साखी है, सुकेत मंडी दा राजा आया, कह लगा दसम पातशाह धन श्री गुरु गोबिंद सिंह साहब जी नू मेरे ते कृपा करो। सामने एक सिख सी जो घोड़िया की लिद हटा के तबेले चो निकलिया सी। वो कवि भी सी, 52 कविया विचों। महाराज कहन लगे राजे नू तेनू ओदे वर्गा बना दिए। राजा कंबिया, कहन लगा महाराज तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो। महाराज ने धन्ना सिंह नू आवाज मारी, भाई धन्ना सिंह जी दर्शन दियो, आओ मेरे कोल। आ गए। कहन लगे भाई धन्ना सिंह जी कुछ मंग लो। धन्ना सिंह कहन लगा तुसी कृपा दे सागर हो, अगे कृपा कीती होर कृपा करो। महाराज कहन लगे तेन इस राजे वर्गा बना दिए। वो भी कहन लगे तुसी कृपा करन लगे हो कि कहर करन लगे हो, इहदे वर्ग। महाराज कहन लगे राजन तू इहदे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा, इह तेरे वर्गा नहीं बनना चाहुंदा है, दोनों कहते भी कृपा कर। असल दात उहदा नाम है, ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਦਿੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ। ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਮੰਗ ਮੰਗੀ ਹੈ, ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਮੋਹੇ ਕਰੋ, ਤੇਰੇ ਬਖਸ਼ਿਆ ਉਹਦੇ ਚਰਨ ਹੋਣ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮੱਥਾ ਲੱਗ ਜਾਏ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚਰਨ ਧੂੜ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ, ਐਸੀ ਮੰਗ

0: पंचम और ऋषभ का मेल देखना।
1: पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा पापा

शब्द है वो गवैया नु महाराज का हुक्म है। वो कहते ने तदरदानी दानी तुम दानी तल तुम दिरना। ये ग्रंथ जो है सर्वलोक प्रकाश की बाणी है। घागड़ी धर्म दृढ़तांग दागड़ी दिम दिरना, बागड़ी ब्रिते बांग तागड़ी तोम तोम तोम किरना, दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इस साहब जी ने तराना गाया तो इसका मतलब है दागड़ी दे दे ताल कागड़ी कोम किरना। इसका अर्थ है कि कुम किरना तुसी पलटे लगाने सरगमा लगानियां और ताना लगानी कुम किरना नाल दे दे ताल दागड़ी दे दे ताल। जे तुसी ताना लगाते हो ताल का ना ख्याल भुल जाना, ताना भी लगाओ और ताल दे अंदर लगाओ, ताल ते स्वर का मिलाप करके कीर्तन करना, बाणी नू राग विच ताल विच गायन करना, इसनू कीर्तन कहेंगे। जे राग ते ताल कढ दियो बाणी पढ़ी जाओ वह कीर्तन नहीं हैगा, पाठ हैगा। तो पाठ जिहड़ा है वह राग तो बिना बाणी पढ़नी पाठ है, राग और ताल के विच गायन करना जिहड़ा है वह कीर्तन। तो गुरु साहब कहिंदे दागड़ दी दे दे ताल, ताल दे विच तुसी घूम किरना नाल पलटे लगाओ सरगमा करो और ताना लगाओ। उसका स्वरूप सतगुरु गुरु गोबिंद सिंह जो फरमा रहे हैं।

अमृतसर सतगुर सतमती जित नाते कौआ हंस हो अमृतसर की अमृतसर गुर अमृतसर नव लाया सब जाते इल वेख पंग

नजर करे जो किस भावे नान का तब तो हंस करे अमृतसर अमृतसर गुर सतगुर गम बाबा मम बरे गर बाबा मम बरे गर सा मा बा धा मा निर्मल नाम दिया नानक को संपाद पाया जाए सतगुरु की वाला

0: Lethal.
1: श्रवण करो भाई बलबीर सिंह जी दे रागी जते पासों शब्द बिसर गई सब तात पर आई जब ते साध संगत मोहे पाई।